0: ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ
1: ਆਪ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, TRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंक

0: انتخابات کے خلاف अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनिए प्रोग्राम गांधी चर्चा।

इस घटना ने बापू उत्ते डूंगा प्रभाव पाया। इसका जिक्र उन्हें कई जलसियां विच भी किया। हो सकता है अपने कपड़े बदलन दे ख्याल दा मुड इसे घटना तो बजा होवे, पर बापू ने लंगोटी केवल सितंबर 1921 तो धारण की। उन्हें इस तब्दीली की कहानी आप दसी। एक बार वह दखन विच मदुराई का दौरा कर रहे सन। वो रेल गड्डी विच सफर कर रहे सन। डब्बा मुसाफरां नाल भरिया होया सी। उन्हें वेख्या कि बहुत सारे लोगों ने विदेशी कपड़े दियां पोशाकां पाईयां होईयां ने। बापू ने उन्हां नाल खादी दियां गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। लोगों ने सिर हिला दिता ते कहा, असीं इन्ने अमीर नहीं हाँ कि खादी खरीद सकीए, खादी बड़ी महंगी है। बापू ने उन्हां दी इस गल ते विचार कीती। इस विच कुछ सच्चाई सी, पर पूरी सच्चाई उन्हां दे सामने होर भी जोर नाल आई। लखां लोग अजिहे सन जिहड़े अपनी गरीबी कारण केवल लंगोटी पहनण ते मजबूर सन। बापू ने अपने आप नूं पुछिया, उन्हां नूं मैं की जवाब दे सकता हाँ। उन्हां नूं इह दसण दा कि बापू उन्हां दी हालत समझदे सन, इको एक तरीका इह सी कि उह भी अपना पहरावा उन्हां वर्गा ही बना लैन। बापू ने उदों कुर्ती, गांधी टोपी ते पूरी धोती पहनी हुई सी। बापू नूं महसूस होया कि उन्हां नूं इह सब कुछ ला छड़ना चाहीदा है। उह अपने आप नूं भारत दी गरीब जनता दे नज़दीक केवल इसे तरह समझ सकनगे। अगले दिन सवेरे उन्होंने नाई बुलवाया ते अपना सिर बिल्कुल साफ करवा दिता। उन्होंने अपनी टोपी ते कुर्ती भी छड़ दिती। धोती की थां ते उन्होंने एक खद्दर का टुकड़ा लैके बाल लिया। यही उन्होंने प्रसिद्ध लंगोटी सी ते अपने जीवन के आखिरी दिनों तक उन्होंने यही पहनी। कुछ साल मगरों लंडन विच उन्हां नूं पुछया गया कि वह इन्ने थोड़े कपड़े क्यों पाउंदे ने। उन्हां जवाब दिता, भारत विच करोड़ां लोग केवल लंगोटी पहनते ने, यही कारण है कि मैं आप भी लंगोटी पहनदा हाँ। लोकी मैनूं अध नंगा कहिंदे ने। मैं जानबूझ के इस तरह करता हाँ तां जो मैं अपने आप नूं भारत के गरीब तो गरीब लोगों नाल एकमेक कर सकां।

0: जय हिंद जी, रुलिया राम जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। रंगा सिंह जी, बच्चे वाले की हाल चाल है तेरा?
0: हाले चाले, वाह वाह, भली तू।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले,

शाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: इस प्रोग्राम च तुसीं फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनते हो। साडा फोन नंबर होएगा 0181 23 42 173। 11:05 ते तुसीं सुनोगे अपनी फरमाइश ते आधारित पंजाबी गीत। प्रोग्राम होएगा धमक जलंधर पेंदी। इस प्रोग्राम च तुसीं वट्सएप मैसेज करके अपनी पसंद दे पंजाबी गीत सुनते हो। वट्सएप मैसेज करन लई साडा नंबर होएगा 94-655-36-077। ते ये जेडे वट्सएप मैसेजेस ने ये तुहानू सवेरे 10 बजे तो 10:30 बजे के दरमियान करने होंगे। पारिवारिक प्रोग्राम वास्ते वेड़े दोपहर 12:05 ते अज के प्रोग्राम च सिलसिला उमरां दे पेंडे प्रसारित किया जाएगा। इस तहत अज तुसी जगतार सिंह कट्टू होरां दे नाल कीती एक मुलाकात सुनोगे। सुरखियां च औरत सिलसिला प्रसारित किया जाएगा। गुणकारी रसोई सिलसिला भी सुनोगे। दोपहर 1:15 तुसी सुनते हो फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम फौजी वीरां लई। ये प्रोग्राम दोपहर 2:15 तक प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2:30 लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे प्रोग्राम च कलाकार होणगे सुनीता बाबू। दोपहर 3:00 तुसी साढ़े DTH चैनल तो सुनोगे फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। शाम 4:02 ते सुफियाना कलाम प्रोग्राम च तुहानू स्वर्ण नूरां दी आवाज़ च सूफी बोल सुनावांगे। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। तो शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। दिहाती प्रोग्राम का समा शाम 6:30 का। अज के प्रोग्राम च कम दियां गल्लां मंडियां दे भाव दे नाल नाल डॉक्टर रमनदीप सिंह खेती व्यापार बारे जानकारी देणगे ते तुहाडी फरमाइश ते आधारित गीतां दा प्रोग्राम सब दी पसंद पेश कीता जाएगा। रात 7:40 ते सबरंग प्रोग्राम च अज कलामे शायर सिलसिला होएगा, जिस तहत प्रेम कुमार नज़र होरां दियां तुसीं कुछ रचनावां सुणोगे। रात 8:00 सुणो जिंदगी हसीन है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम च तुसीं फिल्मी गीत सुनते हो। रात 9:15 साडे दिल्ली केंद्र तों स्पॉटलाइट प्रोग्राम दा प्रसारण होएगा। रात 9:30 तुहानूं पुराने पंजाबी फिल्मी गीत सुणावांगे। रात 10:02 ते सुर छनकार प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। तो रात 10:30 तुसीं सरगम प्रोग्राम च फिल्मी गीत सुन सकोगे। देर रात 11:10 ते तुसीं सुणोगे लाइव फोन इन फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम सौगात। साडा ये प्रोग्राम देर रात 11:10 तो लैके देर रात 1 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। सो जी, परिचय तहत ही साडे अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामों का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समय। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 6:55 हो रहे ने। कुछ पलां दे इंतजार तो बाद तुसी संस्कृत विच समाचार सुनोगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानन्दजः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 40-300 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः

0: प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरणसञ्चलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवम् उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशद्दिनाङ्कपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरलराज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेङ्गलूरुनगरे आर्ट् आफ् लिविङ्ग् फाउण्डेशन् इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशद्वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विकसमारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय BDT अभियान्त्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसो गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 36 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दियां मुख खबरां सुनो। कर्नाटका दे मुख मंत्री सिद्धरमैया ने अपना अस्तीफा दे दिता है। DK शिवकुमार राज दे अगले मुख मंत्री होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश विच हर गैर कानूनी प्रवासी की पछाण करन ते उन्हां नूं देश तों कढ़न लई सरकार की वचनबद्धता नूं दोहराया। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत पंजाब समेत 12 राज्यों नूं 10,000 करोड़ रुपए तों वध दी रकम जारी की। पंजाब विच शहरी स्थानक संस्थावां दीआं चोणां च पईआं वोटां दी गिणती अज होएगी। CBI ने ट्विशा शर्मा कतल केस विच ट्विशा दी सस ते सेवामुक्त जिला ते सैशन जज गिरीबाला सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया। प्रसिद्ध उर्दू शायर ते साहित्यकार बशीर बदर दा भोपाल विच 91 साल की उम्र विच देहांत हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों नूं पंजाब BJP इकाई का प्रधान नियुक्त किया है। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सिज प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट के 2 कैडिटा नूं भारतीय समुद्री फौज विच बतौर अफसर कमिशन मिलिया। मौसम विभाग वालों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच अज कई थावां ते गरज चमक नाल मीह पैण बारे रैड अलर्ट जारी। IPL क्रिकेट विच अज न्यू चंडीगढ़ विच दूजे क्वालीफायर मुकाबले विच

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का

0: निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
0: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देबराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला

0: नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
3: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
2: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
3: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नू, ते ओ हुन हो गया शनिवार नू।
2: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
3: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नू प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नू।
2: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नू छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
3: जी।
0: मन की बात, मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात। एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र, सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल। नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल DD न्यूज, DD भारती, DD इंडिया ते DD किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर, FM 102.7 MHz, DTH दी AIR पंजाब सेवा, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.6 MHz

0: भारती, FM 103.6 MHz अमृतसर, FM 100.9 MHz अते FM 100.8 MHz आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।
1: ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है जी। आकाशवाणी जलंधर तुसी ट्यून कीता है जिथे चल रहा है प्रोग्राम मैक पंजाब दी। ते इस प्रोग्राम च आओ हुण सुनिए सविता साथी मीनू पुरशोत्तम ते साथियां दी आवाज़ च। उड़ीकां फिल्म चोएगी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें।

0: रजनीगंधा, ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
1: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
1: जी,
0: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर, जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
1: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी,
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन

0: पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
7: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
8: हाँ माँ।
6: और माँ, इन दोनों के बाद

0: भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
0: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
3: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
3: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
3: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
3: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
0: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
4: जी साहब, जी साहब।
0: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
4: चलो साथियों।
3: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष

0: दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
1: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय

0: प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तुसी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 10 बज रहे ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल जनसंख्या तब्दीलियां ते केंद्र दी उच्च पदरी कमेटी इस मुद्दे नाल नजिठण लई कानून दी जरूरत दा मुलांकन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का सदा दिता, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई विच दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते त्रिपुरा लई नवें सूबाई पार्टी प्रधान नियुक्त किए। पंजाब विच 102 नगर निगमां लई वोटां दी गिणती अज हो रही है। 7,554 उम्मीदवारां दी किस्मत दा होएगा फैसला। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने टविशा शर्मा कतल मामले च टविशा दी सस ते सेवा मुक्त जिला ते सैशन जज गिरीबाला सिंह नूं गिरफ्तार किया। एयर इंडिया ने पछमी एशिया विच चल रही भू राजनीतिक अनिश्चितावां दे विचकार इजराइल लई अपनियां उडाना जुलाई दे अखीर तक मुअत्तल कीतियां। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट के 2 कैडिटा नूं भारतीय जल सेना विच बतौर अफसर कमिशन मिलिया। मौसम विभाग वालों अज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ते दिल्ली के कुछ हिस्सों विच गरज चमक नाल मीह पैण बारे रैड अलर्ट जारी। महिला क्रिकेट विच भारत ने 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की लड़ी के पहले मैच विच इंग्लैंड नूं 38 दौड़ां नाल हरा के 1-0 की लीड हासिल की। IPL क्रिकेट विच अज दूजे क्वालीफायर मुकाबले विच राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला न्यू चंडीगढ़ विखे 7:30 PM गुजरात टाइटन्स के नाल होएगा। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 10:02 होए ने जी। हुण पेश है लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। प्रोग्राम सुनण वालियां नूं वीरेंद्र दा नमस्कार है जी। ते तुसी जानदे ही हो कि इस प्रोग्राम च अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनने लई तुसी डायल करदे हो साडा फोन नंबर 0181-23-42-173। सो जी डायल करो ये नंबर ते सानू दसो किहड़ा गीत तुसी सुनना चाहुंदे हो।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।
1: दस बज के 40 मिनट हो चुके ने जी। 11 बजे तक हैलो फरमाइश प्रोग्राम च तुसी अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सानू फोन करके सुन सकते हो। नंबर है 0181-23-42-173। हाँ जी स्वागत है जी।
2: सर सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो
2: जी? गुरमुख बोल रहा हूं।
1: और जी गुरमुख जी ठीक ठाक हो?
2: एकदम फर्स्ट क्लास।
1: घर ही हो के अपने काम तो फोन कर रहे हो?
2: नहीं नहीं कर रहे।
1: अच्छा आज फिर काम सानू फोन करन दा ही है। ठीक है जी, दसो गीत केड़ा सुनना है?
2: आबरू मुमीदा सर हर चेहरा यहाँ का।
1: जी जी, ये सोनी कोमी होरां दा संगीत पद कीता है गीत है ना? ठीक है जी, आपां सुन दे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन दे लई।
2: ओके।
3: हर चेहरा यहाँ चांद

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
0: आकाशवाणी जलंधर ते फिल्मी गीतां दे सफर दे रूप विच हैलो फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है जी, जिस विच तुसी अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुन रहे हो। साडे इस प्रोग्राम दा फोन नंबर है 0181-23-42-173। हाँ जी, स्वागत है जी।
2: हाँ जी,
0: कौन बोल रहे हो?
2: सोनू सिंह।
0: हाँ जी,
2: सोनू सिंह।
0: होर सुनाओ, हाल चाल ठीक ठाक ने?
2: ठीक है जी।
0: बड़े गुस्से च बोल रहे, की गल की है? मैं क्या बड़े गुस्से जे लगते हो, किसी ने कोई कह तो नहीं दिता कुछ तुहानू?
2: इतने साल बाद तो फोन मिला, अज गुस्सा करदा?
0: आहो, फिर तो खुशी चाह होना चाहिए।
2: हाँ जी हाँ जी, खुशी है वो सारा बस इतना ही है।
0: अच्छा, इदा स्टाइल इदा का ही है अपना, है ना? तो बोलते कितों?
2: चंडीगढ़ तो।
0: अच्छा, चंडीगढ़ तो, ठीक है जी। चंडीगढ़ वाले फिर नखरे वखरे ही होंगे, है ना? दसो किहड़ा गीत सुनिए?
2: सोल्जर फिल्म में कह रहा था मैं।
0: सोल्जर फिल्म चो, चलो कोई भी गीत सुना दिए।

0: आनी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हैलो फरमाइश प्रोग्राम है जी, आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जा रहा है। तो हुण साडे कोल ना समा इन्ना कह के बस अज दे प्रोग्राम दी असी आखिरी फोन कॉल ते अज दे प्रोग्राम दा आखिरी गीत सुनांगे। देखिए कौन आए ने। हाँ जी स्वागत है जी। हैलो फरमाइश प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो? लो जी, लगता है कि फोन कॉल ही कट्टी गई। इन्होंने ना पहली बार सानू फोन किया सी। रूर सिंह इन्हों का नाम है तो फाजिलका तो इन्होंने सानू फोन किया सी, पर लगता है कि फोन का साडा नैटवर्क इन्हों के नाल जुड़ नहीं रहा। एक

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगी

0: ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनदे हां जी प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशां भेजण लई व्हाट्सएप नंबर नोट करो जी 9465536077। रिपीट कर दिंदे हां 9465536077 ते टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू व्हाट्सएप राहीं भेज दिओ जी। पेश है जी प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लो जी, एक बार फिर स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी विच। अगली फरमाइश सानू व्हाट्सएप राही मैसेज करके भेज रहे ने जी, रजौरी जिला तो उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश बघेल ते इन्हां दा सारा पाल परिवार कह रहे ने जी कोई भी पंजाबी गीत सुना दिता जावे। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। फरमाइश कर रहे ने जी सुरेंद्र कौर की आवाज़ विच गीत सुना दिता जावे। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने जलालाबाद पछमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा ते इन्हां दा सारा गगनेजा परिवार। अगली फरमाइश आ रही है जी भेज रहे ने फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, हरभजन मान का कोई भी गीत सुनाने की गल कर रहे ने। सुनते हाँ जी इन्हां दी फरमाइश ते हरभजन मान का गीत इस गीत तो बाद। पहला सुनते हाँ सुरेंद्र कौर की आवाज़ विच ए गीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने बठिंडा पटेल नगर तो सुभाष लेखराज देसराज राजकुमार अशोक कुमार। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने पिंड दे डाकखाना निमानाबाद नेड़े सफीदो तो ज़िला हरियाणा तो भेज रहे ने जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। कह रहे ने जी कोई भी पंजाबी गीत शामिल कर लिया जाए। लो जी अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने मोता सिंह नगर जलंधर तो मनोज जैन समता जैन सरिका जैन बनीता जैन। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने जी विजय महोबिया कविता महोबिया विशाल विवेक सोनू मोनू रानू सपना शिवी सलोनी ते पेंटर बाबू। ये फरमाइश कर रहे ने जी सतिंदर सरताज की आवाज़ में कोई भी गीत सुना दिता जाए। लाओ इन्हों की फरमाइश पूरी करते हाँ तो सुनते हाँ ये गीत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: जी
2: हाँ जी, गीत भी सुन लिया ते ब्रेक भी ले ली।
1: ब्रेक भी ले ली ते हरप्रीत देखो असी बहुत कुछ सुनिया, बहुत कुछ अपने स्रोतियां दे नाल वंडिया। जेड़ा अगला सिलसिला आ रहा है वो है
2: गुणकारी रसोई।
1: बिल्कुल।
2: और गुणकारी रसोई दे विच अज असी गुण दसन लगे हैं कच्ची अंबी दे। है ना, गर्मियां दे विच कच्चा अंब जेड़ा है ना, कच्ची अंब या कच्ची अंबी कहिंदे आ आपां इहनूं, खाणा सेहत लई बहुत ही फायदेमंद हुंदा। एच विटामिन सी भी हुंदा, विटामिन ए भी हुंदा और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हुंदे ने। मतलब जे सही मायने च रखिए तो शरीर नूं ठंडा करन दा बहुत ही शानदार स्रोत है।
1: बिल्कुल हरप्रीत, देखो जो कच्चे अंबा दा जदों नाम आंदा ना मुँह च पानी आ जांदा, मेरे भी आ गया। गर्मी आउंदे ही बाजार च सब्जी मंडी च खूबसूरत हरे हरे कच्चे अंब देख के मन ना एक करदे कि बहुत सारियां रेसिपीज इहदे नाल बनाई जाए। हालांकि गर्मियां शुरू होंदे ही घरां च कच्चे अंब की चटनी जां कैरी का अचार, जिहनूं कैरी भी असीं कहिंदे आ, पन्ना हो गया, कैरी का पन्ना हो गया, यह बनाया जाता है। गर्मियां दे मौसम च सिर्फ खट्टा मिठा कच्चे अंब की कैरी स्वाद लगती है, सगो ये शरीर लई बहुत फायदेमंद है। हुण देखो एसिडिटी की गल करिए जेकर, है ना, जे तुहानू एसिडिटी है तो छाती च जलन की समस्या रहिंदी है तो कच्चा अंब तुहाडे लई सब तो चंगा फल है। एसिडिटी नू घट करन लई कच्चे अंब की रोजाना वरतों करनी चाहिए।
2: बिल्कुल जी, क्योंकि यह पाचन क्रिया नू मजबूत करता है ना। कच्ची अंबी पेट दियां जिहड़ियां समस्यावां होर भी ने, कब्ज़, बदहजमी ते गैस, उत्तों मतलब इक राहत दवांदा है। और एक तरीके दा तुसीं कह लो कि तुहाडा जिहड़ा खाना है ना वह आसानी दे नाल पच जांदा।
1: बिल्कुल हरप्रीत, देखो हुण गर्मी तो बचाउण लई भी कच्चे अंब दा एक बहुत अच्छी भूमिका है। हुण असीं पानी बार बार पीते हैं पर जेकर असीं कच्चे अंब नूं अपने खाने दे विच या सैलड दे विच शामिल कर लैने आ ना तां पानी की कमी नहीं हुंदी ते खून साफ कर दिंदा है। कच्चे अंब दे नाल विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा दे विच मौजूद हुंदा है जिस वजह नाल खून च मौजूद किसी भी तरह की अशुद्धि जिहड़ी है वह दूर हो जाती है।
2: जी देखो, आप अजकल आपां तां

0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरु मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरु मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

0: हेलो
1: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी? नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया है, ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

0: لمبي. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज़्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आज़ादी के मामलों में तेज़ रफ्तारी से किए गए फैसलों की ज़रूरत होती है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरख्वास्तों में फैसले उसी रोज़ सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशा होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। डीडी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि बगैर किसी गलती के एक मुनज्जम और मुनासिब ढंग से दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। तलबा से खिताब करते हुए प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुँची है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: वजीर मौसूफ ने इस बात का फिर यकीन दिलाया कि बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र गलती से पाक इम्तिहान का इनेकाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इम्तिहान के अमल में मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। भारत ने माहौल के लिए साजगार तवानाई के अपने सफर में एक तारीखी संग मील तय किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 40 लाख घरों को छत पर नस्ब किए जाने वाले शमसी तवानाई के निज़ाम की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि काबिले तजदीद तवानाई से मुतालिक एक पहल से भी ज़्यादा इस यकसर तब्दीली लाने वाली स्कीम से शहरी महज तवानाई का खर्च करने वाले लोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वो बिजली के पैदाकार भी बन गए हैं। इस स्कीम से कुनबे अपने बिजली के अखराजात में कमी कर सकेंगे, सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेंगे और बिजली के अखराजात पूरी तरह ख़त्म कर सकेंगे। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि हर घर में जब शमसी तवानाई होगी तो मुल्क तवानाई की यकीनी फराहमी माहौलियाती इस्तेहकाम और ख़ुद कफील विकसित भारत के तसव्वुर को पूरा करने की जानिब बढ़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैन अलाक़वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरमी नाला और क्रीक इलाके का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सामने के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभरा है और इस्लाहात और साजगार पॉलिसी की बदौलत टेक्सटाइल शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अपने दो रोज़ा दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कृष्णा जिले में मल्लावली सनती पार्क में मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत टेक्सटाइल मार्केट 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के बकदर है और हुकूमत इसे 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तक ले जाने के लिए काम कर रही है। जनाब सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल सनत तेज़ी से वसत पा रही है और उन्होंने भारतीय दस्तकारों को वसी आलमी मंडी तक रसाई फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया।

0: न्यूयॉर्क में भारत के कौंसुलेट जनरल और भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की, इस्लाहात पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसी तर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आलमी सरमायाकारों के लिए मौके वसी करने, इस्लाहात पर मबनी कारोबारी माहौल बनाने के तई भारत के अज़म को दोहराया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अक़वामे मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएन अमन फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अक़वामे मुत्तहिदा की अमन फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाली बहादुर मर्द ख़वातीन फ़ौजियों की सताइश की, जो आलमी सतह पर अमन व सलामती को बरकरार रखने के अपने अज़्म पर कायम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमा आईएमडी ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। 2026 के मानसून के लिए दूसरे मरहले की ज्यादा दिन की पेशगोई करते हुए आईएमडी ने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि शिमाल मगरिब वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत में इस साल जून और सितंबर के दरमियान मामूल से कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेर तामीर पुल गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। ये पुल मोरा कंद्र से कंदौर गांव को मिलाता है, जो बेतवा दरिया पर तामीर किया जा रहा है। यह हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया, जब कुछ कारकुन बारिश के दौरान एक हाइड्रा मशीन के नीचे खड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा सरकार इंटेल और 3DGS को भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम मजीद आगे बढ़ेगा। 2026 की एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलीट्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर्स मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल भारत की पहली खातून बन गई हैं। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर्स के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.78 मीटर्स की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज़ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना करेगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज़्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। इस दे नाल ही सुनदे हां अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत अलका याग्निक ते सोनू निगम दी आवाज़ विच।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का

0: आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, वो अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारे प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

श्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:30 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां सुनीता बाबू दी आवाज़ विच लोक गीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दिया तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाश

साचे ते पवना पया, पवने ते जल हुए, जलते त्रिभुवन साजिया, कट कट जोत समोए। ए फरमान सृष्टि दे रचायता, कुल कायनात दे परवरदिगार अकाल पुरख ते उसदी रचना दी महिमा बयान करता है। ओ अकाल पुरख कितना कु वड्डा है, कितना वड्डा उसका विस्थार है, इस दे बारे विच कोई भी अंदाजा नहीं ला सकिया। उसनू अपनी अपनी बुद्ध अनुसार वड्याया जांदा है। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड जीरा। इस पावन रचना का गायन किया है भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। इस पावन रचना का गायन किया सी भाई अवतार सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। कुदरत दा रचनहारा कादर कुदरत नू रच के उस दे विच ही समोया होया है। उसकी अपार बख्शिश का अंत नहीं पाया जा सकता। तरत आकाश पाताल सबनी थाई वो व्यापक है। उस तो वारने ही जाया जा सकता है। बलिहारी

कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या। सरवण करदे आ भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों इस श्लोक दा गायन।

0: बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या। इस श्लोक का गायन किया सी भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी खड़क सिंह।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही जा हों करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया, रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकाल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते कियां बातां, जो किश करना सो कर रहया। आसा दी वार दा ए पावन श्लोक पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी दी पावन रसना विचों उचारण कीता होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 469 उपर सुभायमान है। विचार अधीन इस श्लोक दियां रहाव वालियां पंक्तियां विच संपूर्ण आसा दी वार दा केंद्री भाव दर्ज कीता गया है, जो इस प्रकार है। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया, रहाओ। अर्थात कुदरत विच वसदे होए हे मालक प्रभु जी, मैं तेरे तो कुर्बान जांदा हाँ, सदके जांदा हाँ। तेरा अंत मेरे कोलों नहीं पाया जा सकता, क्योंकि तू बेअंत गुणा दा मालक है। परमात्मा दी रची हुई संपूर्ण सृष्टि नूं गुरबाणी विच कुदरत आख्या गया है। कुदरत दी रचना करन वाला कादर शक्ति अते प्रकाश दे रूप विच हर थां व्यापक हो रहा है। आसा दी वार अंदर ही रचे हुए एक होर श्लोक अंदर गुरु नानक देव जी कादर अते कुदरत दी सुमेलता दी व्याख्या बड़े सुंदर ढंग नाल करदिआं इस तरह फरमाउंदे हन। कुदरत दिसै कुदरत सुणीऐ, कुदरत भौ सुखसार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबां, कुदरत सर्ब विचार, कुदरत खाना पीना पहनण, कुदरत सर्ब प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पाणी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादिर करता, पाकी नाही पाक। नानक हुक्में अंदर वेखै वरतै ताको ताक। अर्थात सानू जो कुछ दिखाई देंदा है अते सुनाई देंदा है ओ कुदरत दा ही रूप है। रब्बी डर अते श्रेष्ठ सुख भी कुदरत दा ही नज़ारा है। पातालां आकाशां विच अते संपूर्ण सरगुण पसारे विच रब्बी कुदरत दा ही निवास है। वेदां पुराणां कतेबां अते होर धार्मिक ग्रंथां दी कथा विचार विच भी रब्बी कुदरत दी रहनुमाई है। जीवां जंतुआं अते उन्हां दीआं वख-वख जातियां किस्मां अते रंगां विच भी रब्बी कुदरत ही झलकारे मारदी है। चंगियाईयां बुरियाईयां आदर सत्कार अते हंकार दी बोली विच भी रब्बी कुदरत दा ही रूप झलकदा है। हवा पाणी अग अते मिट्टी आदिक पंज तत्तां विच भी कुदरती शक्तियां ही काम करदियां हन। हे कुदरत नूं पैदा करन वाले प्रभु पिता जी, सारी कुदरत तेरी अपनी ही है। तू कादर करता है अते तेरा नाम सब तों पवित्र है। तू अपने हुक्म अंदर अपनी रची हुई कुदरत नूं आप ही देखदा है अते उस विच वरतदा है। इसे प्रथाए राग बसंत हिंडोल विच पंचम गुरदेव गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन कि हे प्रभु जी, तू अपनी रची हुई कुदरत विच वस के कुदरत दी विशालता अते उस दे गुणा नूं आप ही जानदा है। कोई होर दूजी हस्ती जां शक्ति तेरी कुदरत दी विशालता नूं नहीं जान सकदी। जिस मनुख उत्ते तू अपनी कृपा दृष्टि करदा है वह तेरी कुदरत दे राही तेरे नाल जुड़दा है अते तेरे निराकार रूप नूं पछाण लैंदा है। फुरमान इस प्रकार है।

ने सर्व कला समृद्ध, सर्व कला भरपूर अकाल पुरख दी बेअंत तादा चित्रण कीता है। ओ अकाल पुरख जड़ा घट घट विच वसदा है, कुल सृष्टि दे जीवा बनस्पत गलकि सबनी थाई व्यापक है। उस अकाल पुरख प्रभु नू कई किरतम नावां द्वारा संबोधन किया गया है, जिमें कई बार मन वजद विच आके सोने प्रभु नू लाल जीओ कह के भी संबोधन करता है। मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा। सरवण करदे आ भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता गया ए शब्द।

तेरा अंत न जाना। तू जल थल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गोपाल सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे वालों गायन किया होया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर

0: रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

शाम 6:30 ते पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस च कम दियां गल्लां मंडियां दे भाव ते खेती वपार बारे जानकारी लवांगे डॉक्टर रमनदीप सिंह हुणा कोलों। शाम 7:40 ते समा रहेगा प्रोग्राम सब रंग दा, जिस कलामे शायर होणगे प्रेम कुमार ते नाल समात फरमाओगे चन गजलां। रात 8 बजे पेश करांगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।

0: हाँ जी, जिदा आप जिक्र करते सी कि देखो नीता जिहड़ियां है उहदे नाल ही मुरादा है।
1: जी
0: सो कम साफ नीयत नाल जदों आपां करदे
1: हाँ
0: हाँ
1: जी
0: ते सच्ची जिदा कहने कि श्रद्धा नाल करदे हाँ और
1: हाँ जी
0: मेहनत नाल करदे हाँ ते उहदे सानूं बहुत कुछ मिलदा है,
1: बरकत पैंदी है जी बिच।
0: बरकत पैंदी है। सो खेती दे विच तां क्योंकि खेती है ही बरकत दा किता
1: सही गल है जी
0: है कि नहीं।
1: हाँ जी
0: खेती तां देखो सब तों उत्तम खेती क्यों, बाबा नानक ने उत्तम खेती दा सिधांत है
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: उत्तम नूं खेती नूं उत्तम क्यों कहा है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि खेती च बाकी चीजां है नहीं है
1: जी
0: ना। एक तां देखो वैसे ही पुण दा काम है
1: हाँ जी
0: कि जिहड़े दाणे पैदा असीं करदे हाँ
1: हाँ जी
0: वो सारा जीआ जंत हर चीज दा आधार
1: बिल्कुल जी
0: है ना, क्योंकि आधार तां भुख मिटाउणा ही है ना,
1: हाँ
0: सारा
1: जी
0: पेट भरना ही है।
1: सही गल है
0: सो
1: जी
0: खेती इक आधार है पूरे संसार दा,
1: हाँ जी
0: इस करके इहदी उत्तमता जिहड़ी है शुरू तों बणी हुई है और हमेशा बणी रहणी है,
1: कितना कितने ये भी गल है कि जिहड़ा किसान है वह नीत अपनी माड़ी रख ही नहीं सकता।
0: रख नहीं सकता।

0: सोच के देखिए कि बीज उन्हें अपने खेत में बीज दिता, वो ये भी नहीं
1: हाँ
0: सोच सकता कि मेरे नाल वाले खेत में बीमारी आ जाए, क्योंकि उन्हें
1: हाँ
0: पता है उधर मेरे खेत
1: मेरे
0: जाएगी।
1: खेत आऊ।
0: सो परमात्मा ने किता इदा बनाया कि नीत वो चाहते हुए भी माड़ी जी
1: हाँ
0: नहीं रख
1: साफ
0: सकता।
1: सुथरा किता है।
0: सही गल है।
1: सो अज जिहड़ा इस किते दे विच बहुत संभावनावां आ गईआं, जिदा जिदा खोजां होईआं महारा ने अपने जिदा कहिंदे हुंदे आ ना बिरती और प्रवृत्ति नूं इधर उधर कीता
0: जी,
1: ते बड़ियां संभावनावां खेती च पैदा, क्योंकि खेती दे नाल रलगट बहुत सारियां चीज़ां आ गईआं।
0: ठीक है जी।
1: सो खेती नूं अज आपां व्यापारिक नजरिए नाल भी चला सकदे आ। अगे तां कहिंदे सी वी व्यापारी दा काम ही व्यापार करना है, हुण खेती भी इक व्यापार बन गया जिन्हां किसानां ने इस चीज़ नूं अपनाया है।
0: ठीक है जी।
1: खेती व्यापार दे कुछ नुक्त्यां दे बाबत डॉक्टर रमनदीप होरां नाल कोई जानकारियां साझियां होईआं, इह आपां साझियां करदे आ।
0: सुना दिओ जी।
2: डॉक्टर रमनदीप सिंह जसल जी, तुसी डायरेक्टर बिजनेस स्टडी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना तो साढ़े कोल आयो। सब तो पहलों देहाती प्रोग्राम की बैठक च डॉक्टर साहब तुहानू जी आया कहने आ। डॉक्टर साहब गल ये है कि अज खेती दे च जो आप थोड़ी नज़रसानी करते हाँ, खेती च दो चीज़ों का बदलाव, दृष्टि और दृष्टिकोण। जिन्हां लोगों ने दृष्टि और दृष्टिकोण के बदलाव लेके आंदा है तो उन्होंने खेती दे विच भी बदलाव लिया है, तो जिन्हां ने नहीं लैके आता तो वह खेती दे विच भी कितने ना कितने पछड़ के अज भी खड़े हाँ। सो इस करके अज के समय के विच क्योंकि जिहड़ा बिजनेस, क्योंकि व्यापारीकरण अज खेती आप जे व्यापार के नज़रिए नहीं देखांगे तो कितने ना कितने खेती दे विच आपां पिछे रह जाएंगे, क्योंकि समुचा विश्व जिहड़ा है वह अज व्यापारिक नज़रिए अगे जा रहा या चल रहा हर खेत्र दे विच, हर खेत्र दे विच। सो जदों हर खेत्र दे विच असीं व्यापारिक दृष्टिकोण या व्यापारिक दृष्टि नाल काम करते हाँ तो यह कोई मतलब सुभाविक ही है कि खेती के उस प्रभाव तो भी आपां मुक्त नहीं उहनूं कर सकते
0: जी।
2: हुण सब तो पहली गल तो यही बन जी है कि आपां विषय वल जाइए कि अज खेती दे विच जदों व्यापार की गल करते हाँ, तुसी की सोचते हो कि खेती दे विच व्यापारक नज़रिया रखना जां व्यापारक दृष्टिकोण अपनाउणा किन्नी क साडी जरूरत है और किन्ना क साडा महत्व है?
3: समा बदल रहा जी, बहुत अच्छी तुसी गल की शुरुआत की। देहाती प्रोग्राम दे विच लड़ीवारता दे विच असी इस विषय के उत्ते पहलां तो शुरू तो गल्लां करदे आ रहे हैं, पर अज जिहड़ा विशा ढुकमां आपां लिता जिद्दां तुसी कहा कि व्यापारीकरण बहुत जरूरी है। जिनस पैदा करना एक खिता है, जिनस पैदा करन दे विच साढ़े जिन्ने भी खेती व्यापारी है या जिन्ने भी साढ़े एग्रीप्रन्योर आ या जिन्ने भी साढ़े प्रोग्रेसिव फार्मरस आ या फार्मरस आ, उन्हां दे 85-90 नंबर 100 चो हैगे आ। बट कितने ना कितने असी मार खाने कि सारी जिनस तो पका नहीं सकते फार्मर अपने लैवल दे उत्ते, बट असी साडा सुनेहा पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी का यही है कि 5% 10% तो शुरुआत की जाए नौजवानों को, खास करके कि जे एक पीढ़ी पैदा कर दी है तो अगली पीढ़ी अपने आप नू खेती व्यापार च जज़ब करे। रुलिया राम जी, ये गल खास देखने वाली है कि असी जिनस पैदा करन तो बाद जे 10% जिनस नू मोड़ा दे लिए तो उत्तों उत्पाद तैयार कर लिए, उत्पाद नू सीधा खपतकार नू अपड़दा कर दिए, मुनाफे च इजाफा तो होगा ही, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होणगियां। सो इस दृष्टि दे विच, इस दृष्टिकोण नू, इस दिशा निर्देश नू फड़न दी लोड़ा नौजवानों नू, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी नाल जुड़न दी लोड़ा। जे खेतीबाड़ी नू खेती व्यापार दा दर्जा देना, ग्लोबल मंडी है, साडे कोले मंडी दा विस्तार आ, साडे कोले मंडी बारे जानकारी है, तुसी सिख्यार्थी प्रोग्रेसिव फार्मर रूरल यूथ उस मंडी दी जानकारी लैके अपने आप नू नतारण मंडी दे विच जिनसां तों उत्पाद तैयार कर।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन जी, तुसी बहुत एक चंगी जिहड़ी गल कीती रूरल यूथ दी, जदों आपां गल कर
3: जी
2: उदा तां देखिया जावे कि समाज दा जिहड़ा धुरा है उह वी साडा रूरल है, साडा जिहड़ा देहात है उत्थों समाज का मुढ़ बनता है, समाज बजता है
3: जी।
2: जे उस रीढ़ की हड्डी जी कितने ना कितने कमजोरी रहेगी तो मैनू लगता कि समाज के उन्नी मजबूती जिहड़ी है वह आपां क्या असर आई उहदी नहीं कर सकते। हुण सब तो वड्डी समस्या ये है कि नौजवान जिहड़ा है किसी भी समाज का आधार है, जिहदे सिर ते समाज ने अगे जाना है, अगली पीढ़ी शामिल होना है, तो अज नौजवानी ही सब तो लैके चिंता का विशा बनिया है, क्योंकि नौजवानी का जिदा आप कह रहे हैं विदेशीकरण भी हो रहा है
3: जी,
2: बहुत कारण जिहड़े है वो नौजवानी उहदा शिकार हो रहे, बेरोजगारी ला लो कई पक्खां दे उत्ते। हुण अज जो आप नौजवानी नू सीधना होवे जां उहनू साधना होवे, तुसी की सोचदे हो खास करके जिहड़ी देहात दे विच साडी पॉकेट है जां पिंडां दे विच बैठा साडा नौजवान है, किस पद्धर तो, किस पक्ष तो या किस मंतव दे नाल उहनू प्रेरित किया जाए कि वह इस दिशा वाल या इस दृष्टि के नाल या इस दृष्टिकोण अपनावे?
3: देखो साडा जिहड़ा रूरल नौजवान आ, पिंडां दे विच जिहड़ा साडा नौजवान आ, प्रोग्रेसिव, बहुत प्रोग्रेसिव आ, प्रोडक्टिव आ, क्योंकि असी मन के चलते हैं कि उही साडी प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स आ, उस प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नू खेती व्यापार दे विच जज़ब

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे दिहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण मियां खबरां। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश दीयां सरहदां नूं सुरक्षित करना ते गैर कानूनी प्रवास नूं रोकना देश की जनसंख्यकी की राखी लई महत्वपूर्ण है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों नूं बीजां की उपलब्धता यकीनी बनाने लई 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में खामियां की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए है। पंजाब च शहरी स्थानिक संस्थावां दीआं चोणां लई पईआं वोटां दी गिणती जारी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। ते आईपीएल क्रिकेट विच अज न्यू चंडीगढ़ च दूजे क्वालीफायर मुकाबले विच गुजरात टाइटन्स दा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स नाल हो रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश दीयां सरहदां नूं सुरक्षित करना ते गैर कानूनी प्रवास नूं रोकना देश दी जनसंख्यकी दी राखी लई महत्वपूर्ण है। वह अज गुजरात के भुज विच भारत पाकिस्तान सरहद ते महत्वपूर्ण G7 ते G13 सरहदी चौकियों का उद्घाटन करन तों बाद सैनिकां ते जनता नूं संबोधन कर रहे सन। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने लई ड्रोन राडार अते आधुनिक वाड़ समेत आधुनिक तकनोलॉजी की वरतों कर रही है। उन्होंने नवें सुरक्षा ग्रिड नाल सरहदी प्रबंधन विच तब्दीली का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मॉडल तहत नागरिकां प्रशासन स्थानक पुलिस सीमा सुरक्षा बल अते फौज के सहयोग नाल संपूर्ण खेतरी सुरक्षा प्रबंधन किया जाएगा।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने सरहदी सुरक्षा बल की शलाघा की जिसने पिछले 6 दहाकों तो देश की सुरक्षा लिए रक्षा की पहली कतार वजों सेवा निभाई है। उन्होंने बीएसएफ के 2,000 जवानों को श्रद्धांजलि भेंट की जिन्होंने मातभूमि लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज कह के किसानों बीजों की उपलब्धता यकीनी बनाने 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नवी दिल्ली में सौनी मुहिम 2026 लिए खेतीबाड़ी बारे राष्ट्रीय कानफ्रेंस के दूजे दिन मीडिया को संबोधन करदे श्री चौहान ने कहा कि हुण तक 9,76,000 किसान आईडीज बनाई गई ने। उन्होंने कहा कि किसानों वख-वख योजनावां तक पहुँच करने लिए वख-वख दस्तावेजों की लोड़ नहीं होगी। श्री चौहान ने खादों की वंड में पारदर्शिता कालाबाजारी रोकण और किसानों सही सप्लाई यकीनी बनाने की लोड़ पर जोर दिता। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की राखी है तो यह यकीनी बनाने लिए वचनबद्ध है कि खादों की वरतों सिर्फ खेतीबाड़ी उद्देशों की जाए। खेतीबाड़ी कर्जे

है जवाबे हिजर भी, तू जनाब भी हैं तेरे और घड़े भी तेरे हैं। सवाल वसल भी तू है, जवाबे हिजर भी तू, जनाब भी हैं तेरे और घड़े भी तेरे हैं। है फर्दे जुर्म भी तू, मुद्दई भी मुनसिफ भी, है फर्दे जुर्म भी तू, मुद्दई भी मुनसिफ भी, अदालतें भी तेरी, फैसले भी तेरे हैं। मैं तेरी मदह में हूँ हम्द लिखने वाला कौन, मैं तेरी मदह में हूँ हम्द लिखने वाला कौन, रदीफ भी है तेरी, काफिये भी तेरे हैं, किताब भी है तेरी, हाशिए भी तेरे हैं, है मंतकें भी तेरी, फलसफे भी तेरे हैं। ये गज़ल समात फरमाई। सफ़र के बाद भी अज़्मे सफ़र है, सफ़र के बाद भी अज़्मे सफ़र है, मेरा शायद कहीं एक और घर है। परिंदा ही रहीने बालों पर है, वगरना फासला परवाज भर है। ये कैसा तान इन आँखों पे टूटा, ये कैसा तान इन आँखों पे टूटा, नज़र नीची नज़ारा बाम पर है। ये कैसा तान इन आँखों पे टूटा, नज़र नीची नज़ारा बाम पर है। वही आलम है एक बेमंजरी का, वही आलम है एक बेमंजरी का, वही ठहरी हुई अपनी नज़र है। सभी खुद अपना अपना हाल कह लें, सभी खुद अपना अपना हाल कह लें, यहाँ पुरसिश का वक्फा मुख्तसर है। सफ़र के बाद भी अज़्मे सफ़र है, मेरा शायद कहीं एक और घर है। एक और गज़ल समाज फरमाई। ये क्या गली है जहाँ डरते डरते जाते हैं, ये क्या गली है जहाँ डरते डरते जाते हैं, गुज़रते भी नहीं लेकिन गुज़रते जाते हैं, बस अब तो अगला सफ़र खुशकियों का आता है, बस अब तो अगला सफ़र खुशकियों का आता है, हमारी राह के दरिया उतरते जाते हैं, बस अब तो अगला सफ़र खुशकियों का आता है, हमारी राह के दरिया उतरते जाते हैं, जहाँ में कुछ नहीं होता किसी के करने से, जहाँ में कुछ नहीं होता किसी के करने से, ये लोग फिर भी कोई काम करते जाते हैं। ये कैसा हमको इशारा है पार उत

0: करने का, ये कैसा हमको इशारा है पार उतरने का। वो देखो लहरों में कुछ हाथ उभरते जाते हैं, तमाम शहर तो आशोबे चश्म का है शिकार, तमाम शहर तो आशोबे चश्म का है शिकार, न जाने किसके लिए हम संवरते जाते हैं। अजब निजाम फनाओ बका का है कि यहाँ, अजब निजाम फनाओ बका का है कि जहाँ, वो जी उठेंगे दोबारा जो मरते जाते हैं। भरी हैं धुंध से सारे नगर की दहलीजें, नजर में जुगनू ही जुगनू उतरते जाते हैं। ये क्या गली है जहाँ डरते डरते जाते हैं, गुजरते भी नहीं लेकिन गुजरते जाते हैं।
1: हुणे तुसीं प्रोग्राम सबरंग दे विच समात फरमा रहे सी कलामे शायर शायर प्रेम कुमार हुणा दी नज़र। लो आओ हुण शब्दां दी नरमी ते सुरां दी खुशबू दे नाल एक खूबसूरत गज़ल समात फरमाउने आ। लो पेश है एक गज़ल।

जी हाँ, जिंदगी थानू गले बिल्कुल लगाउंदी है जदों तुसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दियो, मनना शुरू कर दियो कि जो हुंदा है सब चंगा हुंदा है। जी हाँ, इसी सोच दे नाल जदों इंसान अगे वधदा है तां ही जिंदगी हसीन हुंदी है। और सब तो वड्डी गल है, जिंदगी हसीन बनाउण वास्ते उहदी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है किसी भी इंसान वास्ते। दोस्तों जी, जिंदगी दी सब तो वड्डी असी गल करिए ना चीज़ दी, ते वो सोच है। सब तो वड्डी ताकत साड़ी सोच है, ते जे सोच चंगी होवे तां औखे रास्ते भी बहुत आसान लगन लग पैंदे ने। कई बारी हालात साड़े हक विच भी नहीं हुंदे, पर हौसला ते सबर सानू डिगन ही नहीं दिंदा। जदों भी मन उदास होवे अपने आप नू यही गल कहो कि समा भी है जो लंघ जाएगा। हर सवेर एक नवा मौका हुंदा ही है। कल जो नहीं होया, जिस बारे असी परेशान सी, हो सकता है वो अज हो जाए। सो इसलिए उम्मीद नहीं छड़नी। सो इस नाल ही बिल्कुल मिलदा जुलदा एक गीत असी थोड़े सामने पेश करन जा रहे हैं, पर मेरा एक वादा थोड़े नाल है कि मैं थोड़े लिए नवे नवे गीत पेश करता रहांगा, पर थानू भी मेरे नाल जुड़ना पएगा, थानू भी वादा निभाना पएगा। लो जी, इस दे नाल ही अगला गीत, एक मोटिवेशनल गीत थोड़े सामने पेश है। आनंद माणो जी इस गीत का।

0: जी हाँ, रुक जाना नहीं, इस सोच नाल जदों बंदा चलता है तो फिर उदा हर मैदान फतेह होंदा है। गल सिर्फ सोच दी है, प्रोग्राम चल रहा है जिंदगी हसीन है, और इस प्रोग्राम दे विच थोड़ा जा लेने अंतराल, फिर मुड़ तो हाजिर होवांगे। तद तक लई बने रहो।
1: मन की बात, मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात, एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल। नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर, एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी। मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेर ते, पर किते उन्हां नूं नौकरी देण तों पहला कोई पैसे जमा करवाउण दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देण वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
0: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है, आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है, कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: जी हाँ दोस्त,

0: जी हाँ, बिल्कुल सही गल है। प्रोग्राम जिंदगी हसीन है चल रहा, और जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच हुण थोड़ा जिहा लैने आ अंतराल। इस अंतराल तो बाद मिलते हैं इसे जोश दे नाल। तद तक लई बने रहो जिंदगी हसीन है प्रोग्राम च।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर की खेतरी समाचार इकाई विच समाचार

0: वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: लो दोस्तों, फिर मुड़ तो हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है लैके। लो जी, हुण गल करदे हां साढ़े रिश्तियां बारे। जिंदगी हसीन है बनाउण दे विच, अगर जिंदगी हसीन है, असीं मान ही लिया कि वाकई जिंदगी हसीन है, उस विच जिंदगी दे विच रिश्तियां दा होना बहुत जरूरी है, रिश्ते भी चंगे रिश्ते। दोस्तों, जिहड़ा पैसा ते शौहरत है ना, सब कुछ नहीं हुंदा। असल दौलत वह लोग हैं जो हर हालात विच साडे नाल खड़े रहिंदे ने। अपने मापिया की इज्जत करो, दोस्तों नूं समां दो, जिन्ना हो सके दोस्तों नूं समय दो, अते रिश्तियां की कदर करो, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी प्यार अते अपनियां दे साथ ही हुंदी है। सो लो जी, आनंद फरमाउंदे आ, आनंद माणदे आ इस गीत दे नाल, जिहड़ा कि बहुत कमाल दा गीत है और इन्हां लाइनां दे नाल बहुत स्टीक बंदा है।

दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीन है चल रहा है और तुसी सानू बहुत सारा प्यार देंदे हो, हमेशा प्यार देंदे हो। जिंदगी एक सोहना सफर है। इस सफर विच कदे खुशियां मिलदियां ने ते कदे मुश्किलां, पर एक गल हमेशा याद रखो, राह चाहे जिन्नियां मर्जी औखियां होन, हौसले कदे टुटने नहीं चाहिए। जो तो समा माड़ा होवे तां अपने आप नूं एक गल कहो कि हर रात तो बाद एक सवेर जरूर आती है। जिंदगी विच डिगना गलत नहीं, पर डिग के उठना छड़ देना एक बहुत गलत गल है। मैं पहला भी ये गल की सी, क्योंकि जिंदगी दे विच सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो गल है कि हार नहीं मननी, क्योंकि हर इंसान की कहानी वक्री है। किसी नूं मंजिल जल्दी मिल जाती है तो किसी नूं थोड़ा समा लगता है, पर जेड़े लोग सबर ते मेहनत नाल चलते रहिंदे ने वो एक दिन अपनी मंजिल जरूर पहुँचते हैं। अपनी मंजिल ते पहुँचना बहुत लाजमी है, वो अज नहीं तो कल जरूर पहुँचणगे। सो इसलिए अपने सुपने ते विश्वास रखो, अपनी मेहनत नूं अपनी पहचान बनाओ, अपने हर दिन नूं एक नवी शुरुआत वांग जियो। मंजिलां उन्हां नूं मिलदियां ने जिन्हां दे सुपनिआं विच जान हुंदी है। वो जान किने पाउणी है? असीं खुद पाउणी है। सो चलो दोस्तो, इस मुस्कुराते हुई रात नूं शाम नूं होर वधिया बनाइए, अगे वधदे हां अपने इस प्रोग्राम दे अगले गीत वालों। सो लो जी, पेश है गीत, बहुत कमाल दा गीत है जिन्हों गाया है रब्बी शेरगिल हुणा ने, तेरे बिन सानू सोणिआ।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को

0: बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय

0: सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9.

0: is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: मीडियम वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, ते एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो जी, हुण वेला हो गया प्रोग्राम पुराने पंजाबी गीतां दा। आओ हुण सुनदे हां पुराने पंजाबी गीत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। हुणे तुसी प्रोग्राम सुन रहे सी पंजाबी फिल्मां दा गीतां दा प्रोग्राम सी, तुसी आनंद माण रहे सी। लो हुण थोड़ी देर तुसी सुणोगे मुख खबरां।

0: जी हाँ, बिल्कुल सही कह ला जी। लो जी, प्रोग्राम चल रहा है सरगम। इस प्रोग्राम चलाने है थोड़ा जहा अंतराल, फिर मुड़ तो हाजिर हो मांगे इसे प्रोग्राम च।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल। नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।

पल पल दिल के पास। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास है। वो एहसास जदों कोई इंसान साड़ी जिंदगी तो दूर होके भी हर वेले साड़े दिल दे बहुत नेड़े रहिंदा है। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होंदे हन जिन्हां नूं हर रोज़ मिलन दी लोड़ नहीं हुंदी। उन्हां दी एक याद, एक आवाज़ जां एक मुस्कान ही सारा दिन मुस्कराहट नाल भर दिंदी है। तो जदों दिल किसे नूं सच्चे दिलों चाहे ना, तो वह इंसान पल पल दिल के पास रहिंदा है। ये सिर्फ एक गाना ही नहीं, एक एहसास है। जी हाँ, प्रोग्राम सरगम दे विच अखीरला गीत थोड़े सामने पेश करन जा रहे हैं। लो जी, आनंद माणो जी इस गीत का।

0: तेलंगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च।

0: प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रोग्राम सौगात जारी रहेगा सवेरे 1 बजे तक। 1 बजे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम पंजाबी मेलेडियस गीत। यह प्रोग्राम सवेरे 2 बजे तक जारी रहेगा। 2 बजे तुम सुन सकते हो पंजाबी युगल गीतों का प्रोग्राम पंजाबी ड्यूट म्यूजिक। असं दसना चाहवे कि पंजाबी मेलेडियस गीत और पंजाबी ड्यूट म्यूजिक विच असी उही गीत शामिल करते हैं जिन्हों की अक्सर फरमाइश सानू साडे स्रोता करते रहते हैं। सवेरे 3 बजे तड़के अमृत वेला होंगे जी, प्रभु भगती का वेला। सरवण करांगे गुरबाणी विचार, उस तो बाद 3:30 सरवण करांगे कुछ भजन कुछ भगती गीत। 4 बजे तड़के असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे जित्थों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। ऐसी सवेरे 4 बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सौगात। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी, गलबात करते हैं प्रोग्राम के पहले कॉलर के नाल। देखते हैं कौन ने, किस जगह तो आए ने जी और किस गीत की फरमाइश लैके हाजिर हुए ने। हैलो
1: हैलो सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने, अपना नाम दसो, किस जगह तो बोल रहे हो।
1: मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़।
0: वाह जी राजू जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडे अपने प्रोग्राम।
1: धन्यवाद सर जी, तुहाडा भी स्वागत
0: है जी। जी जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है जी। होर सुनाओ जी, की हाल चाल है तुहाडे।
1: बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
0: तुहाडे शहर दे की हाल चाल ने।
1: ठीक ठाक ने, अज तां मौसम ठीक दी सर जी, हवा चलदी रही।
0: बिल्कुल जी, सारे पासे हुण तां थोड़ा जिहा हवा चल रही है ते उम्मीद करदे आं कि परमात्मा दी कृपा होएगी, थोड़ी गर्मी घटनी चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा पै रही वैसे।
1: लगदा गर्मी बहुत थी सर जी।
0: जी चलो, हो राजू तुहाडी कॉल लगी, तुहाडी आवाज इस वेले लखां करोड़ों लोगों तक आकाशवाणी दे माध्यम पहुंच रही है। अज केड़ा गीत सुनाओगे सारे सुनने वाले।
1: सर जी जगजीत सिंह दा गीत सुनना जी, फिल्म है जी लौंग दा लिस्कारा। गाने दे बोल ने सारे पिंड च पुआड़े पाए, बिलो नी तेरे
0: गोरे रंग ने। बिल्कुल जी, बड़े मकबूल गीत है। ते जगजीत सिंह दी वैसे गजलां दे बादशाह मन्ने जांदे ने। ते इह गल तुहानू गीत किस तरह पसंद है, क्यों पसंद है, खास वजह के वैसे।
1: फिल्म साडे इत्थे लगी सी, मतलब कई बार देखण जांदे सी
0: जी। लौंग दा लिस्कारा बड़ी सुपर हिट फिल्म
1: सी, पहली फिल्म सी गुरदास मान दी,
0: और कहते बड़ी सुपर हिट फिल्म हुई सी।
1: हाँ जी।
0: चलो तुहाडी पसंद दा गीत तक पहुंच रहा जी, कॉल करने लई बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। प्रोग्राम नाल इसी तरह बने रहो, अपने खत भेजते रहो, कॉल करते रहो। तुहाडी पसंद दा गीत आ रहा जी।

मेहरबान दोस्तो, मैं आप सब सूझवान स्रोतियां ते दर्शकां दा बेहद शुक्रगुजार हां जिन्हां ने अपने निमाणे जे माण नूं माण बख्शा है। ते मेरी भी आप सब लई इहो दुआ है, जेड़ा अज तक होया ना होवे, मैं ऐसा थोनूं प्यार दियां। मेरी उम्र हजारां साल होवे, हर साल थोड़े तो वार दें। सो गीत पेश है कि जदों दिलां दी वही ते इश्क दे खाते खुल दें, ते हर दिल चो आवाज की निकलती है।

0: है।
1: चलो चलो, आज कितना की सुनना चाहते हो?
0: ओ लाओ जी, मच्छरदानी यादें, मच्छर ने खाली
1: वाह जी वाह,
0: तोड़
1: बिल्कुल
0: दी,
1: बिल्कुल
0: सुरिंदर
1: इन।
0: कौर
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: के
1: जी,
0: केड़ा वो सुरिंदर कौर दे वो
1: नाल रंगीला जाट है जी।
0: आ रंगीला जट रंगीला।
1: तुसी बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हो, ढुकवा मौसम दे हिसाब नाल चलदा गीत,
0: हाँ
1: मच्छर
0: जी,
1: भी बहुत
0: ठंडा
1: ने।
0: मौसम है जी, थोड़ा थोड़ा
1: पर
0: और क्या
1: अजकल दे बच्चेयां नूं मेरे ख्याल पता नहीं होना कि मच्छरदानी हुंदी की है, कि पता होएगा?
0: नो पेशियां बुला लो,
1: क्योंकि अजकल दे जवाक जिहड़े ने ओह तां एसी च सौंदे ने,
0: उन्हें तो
1: कूलर अगे
0: मैसा ही
1: सौंदे
0: नहीं
1: है।
0: मिला, मैस क्या हुआ,
1: जी, चलो।
0: मज की होंगी मज। हाँ जी
1: वक्त बहुत बदल गया जी, है ना जी।
0: हाँ जी हाँ
1: तुहाडी पसंद दा गीत तुहाडे तक पहुँच रहा, पहला कुछ वट्सएप मैसेजेस अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं जी। ते सब तो पहला जिहड़ा वट्सएप मैसेज असीं शामिल करन जा रहे हैं प्रोग्राम विच, सानू भेजे जी मजनू का टीला दिल्ली तो। भेजन वाले ने कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग, आकांक्षा, गुड़िया ते इशिता। सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो मैसेज भेज रहे ने। एक कहिंदे ने एनी सोंग, बहुत बहुत शुक्रिया इन्ना प्यारा मैसेज भेजन दा लई, तुहाडा धन्नवाद है जी। और वड़िंग खेड़ा पंजाब तो सानू मैसेज भेज रहे ने। मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इन्होंने किसी खास गीत की फरमाइश नहीं की, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आदरणीय प्रसारक महोदय, आपको हमारी प्यार भरी नमस्कार। इस तरह लिख के भेजे जी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आज़ाद नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो। आप हम किसी भी सदाबहार पंजाबी गीत में शामिल करें, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन दे लई। पिंड डाकना निम्माबाद, नेड़े सफेदो मंडी, जिला जींद, हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमलजीत कौर, कहते किसी भी पंजाबी गीत सड़ा नाम शामिल करो। लो जी हूँ असी गीत वो प्ले करांगे जिसकी फरमाइश सानू अंबाला तो आई है। बंसी लाल जी ने बड़ा प्यारा, बड़ा ही मजाकिया और दिल नू छून वाला गीत फरमाइश किया, तो साड़ा फर्ज बनता जी उस गीत को प्ले करना। आओ जी सुनते हैं सुरिंदर कौर रंगीला जट्टा है गीत।

0: प्रोग्राम चालिया जी सौगात ते आहुन गलबात करदे आं प्रोग्राम दे अगले कॉलर दे नाल। हैलो
1: हैलो
0: हाँ जी नमस्कार जी प्रोग्राम सौगात विच तुहाडा स्वागत है। की हाल चाल है जी कौन बोल रहे ने किहड़ी जगह तो?
1: मैं गुरदासपुर तो बोल रहा हूं जनकराज जी।
0: बहुत खुशी मतलब तुसी मिठाइयां बनांदे हो मिठे मिठियां ना जी? वेरी गुड वेरी गुड मतलब कैटरिंग करदे हो और मिठाइयां भी बनांदे हो ठीक है बहुत खुशी हुई। तो तुम दिने मौका मिलता साडे प्रोग्राम सुनन दा कि सिर्फ राती सुनदे हो? दिने भी सुनदा। चलो बहुत अच्छी गल है। अज केड़ा गीत सुनना चाहंदे हो? अगर तुसी भी प्रोग्राम शिरकत करना चाहते हो साडा नंबर है जी 081-3342-4171 और व्हाट्सएप 94-655-3607।

0: चाहोगी?
1: सर आप सुना दो, मिस पूजा के बारे में सुना दो।
0: ठीक है,
1: मैं
0: चलो मिस पूजा जी का गीत सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपकी पसंद का गीत आपके पास पहुंच रहा है जी। अगर तुसी भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो और साढ़े नाल अपने विचार सांझे करना चाहते हो, कॉल करो जी 0181 23 41 171।

0: हेलो,
1: मेरी आवाज सुन पा रहे हो जी? हेलो हेलो, लगता जी कॉल प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रही। हेलो सन, अफसोस है जी कि तकनीकी खराबी कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और अगला व्हाट्सएप मैसेज रसी प्रोग्राम शामिल कर रहे हैं सदर बाजार कुरावली तो अनिल, माया, वनीत, सुमित, राहुल, पंकज, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। और ए वाला मैसेज सानू भेज रहे ने पिंड पिपरलोड छत्तीसगढ़ तो दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति ते शिवांश वर्मा। ऐ सुनना चाहते ने गुरदास मान ते दलजीत तो साइन लगाया हुआ एक युगल गीत। लो जी, इन्हों की फरमाइश थी, सुनते हैं अगला पंजाबी गीत।

रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल हुए कर स्नाना, गुरपूरै कीने दाना। इसे रचना दे अंत विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, साध संग मल्लाथी, पार ब्रह्म पयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभाया। इस फरमान विच गुरु साहिब ने मन दी सुचमता ते प्रभु प्राप्ति दी सर्वोत्तम विधि दर्शाई है। भारतीय संस्कृति विच पुरबां दे मौके ते इशनान दी महिमा नूं अणगौलियां तां नहीं कीता जा सकदा, पर ये इशनान सदीवी सुचमता प्रदान नहीं करदे। सच्चा इशनान मन नूं निर्मल करना है, जिस दे लई सतपुरशां दी संगत लोड़ींदी है। सतपुरशां तो भाव सृष्टि विच रमे हुए रामदेव दासां तो है। उन्हां दी संगत मानो सुचमता प्रदान करन वाला सरोवर है। इस करके गुरु साहिब फरमाउंदे ने, संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावै

0: संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का। इस शब्द गायन कीता सी पाई इंद्रजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। गुरमत विच धूड़ी इशनान दी वी महिमा बयान कीती गई है। इत्थे धूड़ तो भाव रेण है, जिस तो भाव निम्रता अते हलीमी है। हलीमी ते निम्रता सच्चे गुरु दी शरण विच पै के प्राप्त हुंदी है। ते गुरबाणी विच एक वचन विच संत पद केवल गुरु लई है। इसे करके सच्चा इशनान सच्चे गुरु दी सेवा विच ही है। भगत कबीर जी ऐलानिया तौर ते इस तत्थ नू नशर करदे हन। सुणदे आं गुरप्रीत सिंह न्यामिया होरां पासों इह वार्ता। साचा नावण गुर की सेवा।
1: यह पावन तुक भगत कबीर जी वालों उचारण की गई है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 484 ते सुशोभित है। यह आसा राग का शब्द है। भगत कबीर जी अजिहे संत महापुरश होए हन जिन्हां ने लगभग 600 साल पहला रूढ़ीवादी लोगों विच अजिहियां क्रांतिकारी गल्लां आखियां कि इस बारे कोई उदों सोच भी नहीं सी सकता। आप जी की बाणी नूं गुरु साहिब जी की बाणी दे तुल सन्मान दे के गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज कीता है। आप जी ने

पूजा राम एक ही देवा, साचा नामण गुर की सेवा। आप जी सरवण कर रहे सो पाई हरचंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया।

गावे गुण तुम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कभी कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो गावे कपलाद आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कार कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल

0: प्राण मान दान मग जोहन हित चित दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू ते ले रखी निरारी तावन पावन कोर कमावन एह बिद करत औद तन जारी करम तरम संजम सुचने मा चंचल संग सगल बिदहारी पश पंखे बिरख स्थावर बहुविध जोन प्रम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत के बार होत कट खारी नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारे नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारी।
1: सर्व गुण

प्रभ तेरो थानं, मन धन तेरो प्राणं, एक सूत है जहानं, कवन उपमा दियो बड़े ते बढ़ानं, जाने कौन तेरो भयो अलख अपार दियो, अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार।

0: सद बलगा रे।
1: जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो हो, धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो। नवनिध नाम निधान रिद सिद ताकी दासी, सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी। आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो, गुर रामदास कल उच्चर तै हर प्रेम पदार्थ पायो।
2: उद्दम कर लागे बोह पाती, बिचरे अनिक शास्त्र बोह खटुआ। पसम लगाए तीरथ बोह भ्रमते, सूखम देह बंदे बोह जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यों प्रेम बटाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनिक पांत ठाटे कर ठटुआ।
3: सतगुरु नाम एक दिव मन जपैदर, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार, शब्द दिद विचार काम क्रोध खोवै जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिख्याता, एह निस त्यान तावै पलक ना सोवै जियो। जा को देखत दरिदर जावै, नाम सो निधान पावै। गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तोवै जियो। सतगुर नाम एक दिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
4: जगत उधारन नाम, सतगुर तुठे पायो। अब नाहे अवर सारे काम,

0: एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सो कहु टाल गोर सेविया अहन सुसहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होआ सिफत खसामदी अरसहों कुरसहों तदरठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सचा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी कनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहा अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती राथ आस अस बारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: का एक रथ एक रथवा जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेता सत जुग रथ संतोख का धर्म गे रथवा उतरे ते रथ जते का जोर गे रथवा दोप रथ पे का सत गे रथवा काल जुग रथ अगन का कूड़ गे रथवा महला पहला
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सब को सच समावे ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्रच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लय आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलह भया नील वस्त्र लय कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्यार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए

पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समाधंग मुख झूठ बिपुखण सारंग त्रैपाल ते हाल बिचारंग गल माला तिलक लीला टंग दो धोती बस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्म करमं सब पोकर निश्चो करमं कहो नानक निश्चो त्या विण सतगुर बाट।

वन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: को करला वो गोबर तर ना जाए तो ती तिका तह जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवा छुरी बगाए तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद ओ ना पे आवे ओई साथ कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार सर

0: जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस्याणी है पितरी चोर करे वडिये हाथ दलाल के मुसफिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: ज्यों जोरू सरनावणी आवे वारो बार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सुचे एह न आखिए बहन जे पिंडा तोय सुचे से ही नानक जिन मन वसिया सोए।

0: जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक हो, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवेर सोए, नानक सूतके बना उतरे ज्ञान उतारे तोए। महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़,

बधे जमपुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है तुझे लग जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख पूजिया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा।

आखिए जित जमे राजा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पांड उपजे पंडै बाज न कोय नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा साला ही है भागा रतीचा नानक ते मुख उजले तित